0: जी
1: मैं
2: आप यहाँ कैसे?
1: जैसे ये सब
2: यानी कि आप मेरी?
1: जी हाँ ऐसी मैं इसलिए
0: खुसुर पुसुर वाली